0: ओनली टू हैव प्योर फीलिंग विमल भावा वुड अमाउंट टू हैविंग एजुकेशन टू हैव गुड क्वालिटीज वुड कॉन्स्टिट्यूट बीइंग एजुकेटेड हैविंग इक्वालिटी एंड इक्वानिमिटी वुड अमाउंट टू बीइंग सिंपल दिस इज द पाथ ऑफ ट्रूथ विच साई टेल्स यू
1: కట్టెలందునని పులు కలిగినట్లు కట్టెలందునని పులు కలిగినట్లు తిలలయందున తైలంబు వెలయునట్లు